मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 की वैशाख माह की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:26 व 48 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।